0: क्योंकि मैं ये रात बिगी बिगी एंड आर ऑलवेज चोरी चोरी टू वेलकम यू बैक ऑन रेडियो प्लस. 4:04 हुए हैं. आज सैटरडे है, 2 मई 2020. ये जो शो है मॉर्निंग मैजिक चलेगा 6 बजे तक चंद सुनहरे गीतों के साथ.
1: Old is cold on Radio Plus.

बड़ी गानी ऑन रेडियो प्लस ऑन दिस सैटरडे मॉर्निंग। 4:09 हुए हैं, अभी वक्त हो चला है आपको सुनाने के लिए बहुत ही प्यारा गाना फ्रॉम द मूवी गाइड। हम आपको 1965 में लेकर चलते हैं आज पेड़ जीने की तमन्ना।

इज चूकर मेरे मन को याराना से लिया हुआ एक शोरदा की आवाज में. वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू दिस स्पॉट ऑफ योर मॉर्निंग मैजिक. यानी इसके साथ 6 बजे तक एंड विद अस सम सुविनियर्स. आपके मैसेजेस व्हाट्सएप 5899999. लेट्स गो डाउन 1977. दूसरा आदमी से लिया हुआ ये गाना.

लता मंगेशकर की आवाज में आपके लिए ऑन रेडियो प्लस 5:14 हुए है एंड द नेक्स्ट गाना इज फ्रॉम द मूवी पूर और कांते इज टू ब्रिंग अ लवली स्माइल दिस मॉर्निंग ऑन योर फेस. मुझे पता है कि difficult to wake up. पर ये गाना आपके लिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में है, तो enjoy कीजिए ये गाना.

0: Magic Morning. Radio Fresh.
1: To all the fans of Karishma Kapoor and Aamir Khan and this movie Raja Hindustani, हम आपको 1996 में लेकर चलते हैं और अलका याग्निक की मधुर आवाज को सुनते हैं एक साथ.

ये रेडियो प्लस है और अभी आप सुन रहे थे सितवन आसमां से, सितवन आसमां से तुम क्या मिली जाने जा। एंड टाइम नाउ, क्योंकि 30 मिनट बाकी है 6 बजने में और हम आपको 2000 अर्ली 2000 में लेकर चलते हैं। दैट्स फ्रॉम द मूवी आशिक तुम क्या जानो। और इसके बाद दायाक्षर प्रेम के से लिया हुआ हम आपके लिए एक और गाना चलाएंगे। यू स्टे वेल ट्यून्ड एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑन रेडियो प्लस।

इस ब्यूटीफुल गाना टेकन फ्रॉम द मूवी कहो ना प्यार है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके डिजाइने डिजाइने उबलिए आप समान फिल्म ला कि देखूले दसा फिल्म ला बट वाई नॉट टेकिंग टाइम दिस वीकेंड टू वॉच ऑल दीज हिट्स फ्रॉम द यस्टरडेज जैसे कि कहो ना प्यार है, कल हो ना हो, कुछ कुछ होता है एंड रिफ्रेश योर मेमोरी विद दिस ब्यूटीफुल मूवीज। और अभी के लिए दैट्स ड्राइव डाउन 2004 मधुशी से लिया हुआ ओ जाने जाना और उस मूवी में नजर आए थे जॉन अब्राहम और साथ में बिपाशा बासु। बहुत ही प्यारा गाना है तो ये गाना आपके नाम।